कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 सितंबर महीने का शनिवार दिन और तारीख है 24। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता तानातुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां आपको मिलेगी योगा एक्सरसाइजेस, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने वाले न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दालिक न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। आठ बज के 30 प्रस्तुत है नोटिस न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो निजमान, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी के समाचार या आकाशवाणी ईटानगर।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री

0: सर्वसत्रीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM पर ये आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during the virtual interaction with Seva Yatris, travelling on a...
3: He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said...

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों अब आप इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से बड़े गीत पेश है भक्ति गीत।

ही आकाशवाणी इटानगर हिलो हृद पोल गे आलो हमनी गोला लोकना ने तरी आर होके गालो मेंकेन अगम मेलेन जी दाखनांगो दाक्षा पेते सेवा संकल्प अभियान ग आरालो सेवा यात्री गद वाराणसी लोक के बदनगर पेले ब इंगो हिने गद वर्चुअल ब कार्यक्रम रखे दुला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेनला इंडिया ही गिम विकसित भारत ब मोत तनाम लगा ब गुमिन हो इन लोक नीलुम नित नरुव मदुम गो पहिदला अगर आना एम घर के दो अमला मेंटू इंडिया हो के गृह निजरिया में गर स्टेट गोन लोक के स्टेट गोन लो इंक भिन लेगला ये नाम ही गी आके ना किन गे अम रम्मम अल्लुब हेमिन हिला यम नाग बे इदाकु ना के अमला मोदी में दातु अन्य न्यू यीगोला न्यू इन आरा होगो दोलु दोलु लोक इंफ्रास्ट्रक्चर एम पुर्दियारु दोब मोल जिला लेतुकु ओके अन्य मेगा दसिन आयुदादी पुष्पास हिला दोपा पिपला ये दुकु ना के अमला मेंटातु मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम यूरोप के नाम के दुगो लोगो मलोग अलोलो अन्य न्यू यीगोला न्यू ये गोसु एक बार अमला मेंपाजितु 25 सितंबर 2014 अनि ओगो इनिशिएटिव हिगिम यूरोप गन में इंडिया हिगिम मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ओके इनोवेशन ग ग्लोबल हब गोब इलादो ब मुदा यूरोप ग बेनी 101 एरिया ग जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित बागवा म मलो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती परनायक ने लोक भवन इटानगर लो कार्यकर्ता रखितु मुन्य कार्यकर्ता रेखी दुला अगो माई एम जिक्का कोक्का ही दागलो नॉर्थ ईस्ट मोक होक ये नम दू नम एम जिग जोगो दोब इत्ता नम लगाब लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मेकानिज्म हेगिम दिन सियारू ब मिला जुका अमला पार जो हितु 101 एरिया गद ग इससे पूम इनला ओके दिदिरसक ओदाकलो तिंग इनला दूने नाम रूम तुम्हें जा मुझ दाख हम इसे लो तुर्बुदा ले जिला ये नाम हम गवर्नर मुमाई बे कोई कितु मेंके नागम ही मनु आकाशवाणी इटानगर लोक के तपादू मलो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मु अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटेरिएट ब्लॉक टू इटानगर लोक सोमनाथ यात्रा 2026 मु अलग दादी लोक मुकोक जी दोला इंद्रो मोतु दिन रोना यात्रा हिम एक जिदुना डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अमला मेंबर जितु आरजीयू एनआईटी ओके एपीयू लो पूरी पोताला ये ने स्टूडेंट्स का दे निदुम हम पिगो बे मुग स्टेट होक गुजरात पेले बे इन लेन एक बा अमला में पाजितु होम मिनिस्टर मामा नातुंग आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर दसांगलू पुल चीफ सेक्रेटरी ओके कब कब निगोमित गद दसिन या का जागो प्लेग ऑफ सेरिमनी एम इदाकलो ये मिंदु मिन गतु पोषण माह 2026 गे दिन रोना अगले गो ब मधुला पपुंपारे गे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गद डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम लेकिन गो ब ये बम दू बम ही दाखला मलो जेपीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यूपीएलओ रेसिपी कंपटीशन गो लो दुमगतु पपुंपारे डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस सेल्स लोक याद ना गो आंगनबाड़ी वर्कर्स का दुद मुनु सीडीपीओ गद गे कूरे का कोलो ये दागला दोनम तुनम दो किन तुयन दो मोका मीन्स को कॉम्पिटिशन लो आलू जितु पपुम परे गे डीसी मैडम मामू हागे मु इनिशिएटिव माज ब आलना गो एक दो अमला कोई जिदुला मेनला आगे लोकल प्रोडक्ट एम यूज दुला असिनो एम दो किन तुयन दो मोनम हिगी मुन गे बदु ओपो एम अलगरु दु ओके कुदा आत अबगत गे दो बत्तु बगे लायनम एम सिन तुसु बाल काम बदु नके अमला में पाजिता तु मलो जापान गे आईची नागोया लो एशियन गेम्स एम इदाकलो इंडियन एथलीट्स बारानिका एलांगोबान में विमेन्स पोल बोल्ट इवेंट लो ब्रोंज मेडल गो पास तु एशियन गेम्स एम इदाक लो पोल बोल्ट इवेंट लो इंडिया ए हिनी गे आनी होगो मेडल एम पा जब पादा कुन्ना के अमला गोमिन होइनम में पाजितु के तानगा दे हिर गे गालो मेंकेन आगो मेंजिसा एगे

नमस्कार दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, और अभी आप सुन रहे थे काली गालो बोली में रीजनल समाचार। खबरों का सिलसिला यहां पूरा होता है और अब वक्त हो चला है आपके और हमारे इस

सुबह के खास सफर का और मैं हूं आपकी अपने आरजे याजू और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रस्तुति यानी सुबह सवेरे।

अरुणाचल के सभी सुनने वालों को, चाहे आप ईटानगर की ठंडी हवाओं के बीच अपनी चाय की पहली चुस्के ले रहे हों, नाहरलगन की सड़कों पर दिन की तैयारी शुरू कर चुके हों, या फिर पहाड़ों के किसी शांत कोने में बैठकर रेडियो ऑन किया हो, आप सभी का इस नए दिन में, इस नए सुबह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह का ये वक्त अजीब सा सुकून लेकर आता है ना। शहर अभी ठीक से जगा नहीं होता, पहाड़ों पर धुंध थोड़ी थोड़ी चट रही होती है और दिन भर की बागडोर अभी थोड़ी दूर होती है। ये जो आधा एक घंटा हमें मिलता है, ये पूरे दिन का सबसे कीमती हिस्सा है, क्योंकि ये वक्त किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और शांत गीत के साथ, जो आपके मन को बिल्कुल हल्का करते हैं।

दोस्तों, गीतों के इस धुन के बाद वापस जुड़ते हैं सुबह सवेरे के साथ। अक्सर हम सुबह उठकर सबसे पहले फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। नोटिफिकेशन, मैसेजेस, दुनिया भर की चिंताएं, हम दिन शुरू होने से पहले ही खुद को थका देते हैं। इसलिए आज सबसे पहले बात करते हैं योगा की। दोस्तों, योगा कोई मुश्किल, आसान या शरीर को अजीब तरीके से मोड़ने का काम नहीं है। योगा का सीधा मतलब है जुड़ना, अपने शरीर और अपने सांसों के साथ जुड़ना। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो भी सिर्फ 10 मिनट निकालिए। अपने बिस्तर पर या जमीन पर एक मैट बिछाकर सीधे बैठ जाइए। सबसे पहले अनुलोम विलोम या नदी शोधना प्राणायाम। अपने दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिए, बाई तरफ से गहरी सांस लीजिए और फिर बाई नाक को बंद करके दाई तरफ से धीरे धीरे सांस छोड़िए। जब आप ये 5 मिनट करते हैं तो दिमाग के दोनों हिस्सों में ऑक्सीजन का बहाव संतुलित होता है। जो बेचैनी या दिमाग में एक शोर रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसके बाद अगर शरीर में थोड़ी अकड़ महसूस हो रही है तो मरजारियासना, बतिलासना यानी कैट काउ स्ट्रेच कीजिए। चार पैरों पर आकर सांस लेते हुए कमर को नीचे और गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीठ को घोल बनाकर थोड़ी से को सीने से लगाए। हम में से जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी के लिए ये एक बेहतरीन स्ट्रेच है। सुबह का योगा शरीर को यह एहसास दिलाता है कि नए दिन शुरू हो चुका है और शरीर अब तैयार है। एक और गीत सुनते हैं, थोड़ा ताजा, थोड़ा सुकून भरा, फिर आगे बढ़ेंगे फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और ये है कार्यक्रम सुबह सवेरे। योगा के जरिए जब सांसें ठीक हो गई और मन शांत हो गया, अब वक्त आता है शरीर को थोड़ा एक्टिव करने का, यानी एक्सरसाइज का। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ हैवी जिमिंग या बहुत तेजी से भागना ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज का असल मकसद है आपकी मोबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, खासकर हमारे पहाड़ी इलाकों में जहां सुबह ठंडक की वजह से जॉइंट्स थोड़े स्टिफ रहते हैं। अगर आप बाहर निकाल सकते हैं तो 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक यानी थोड़ी तेज चलना सबसे बेहतरीन और सेफ एक्सरसाइज है। चलते वक्त सांस लेना का रिदम बनाए रखें। और अगर आप घर के अंदर ही है तो बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट्स कीजिए। 5 से 10 मिनट जॉइंट रोटेशन, गर्दन, कंधे, कलाइयां और एंकल को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाइए। 10 से 15 बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये आपके घुटनों और थाइस के मसल्स को स्ट्रांग करते हैं। और अगर स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं तो सीढ़ियां चढ़ना उतरना एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। याद रखिए, एक्सरसाइज में सबसे जरूरी चीज इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। एक दिन 2 घंटे मेहनत करके अगले 3 दिन बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है कि आप रोजाना सिर्फ 20 मिनट करें, लेकिन ईमानदारी से करें। एक खूबसूरत गीत और सुनते हैं, उसके बाद आएंगे दिन के सबसे अहम पहलू पर, यानी हमारे डाइट और डेली हेल्थ टिप्स।

गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। दोस्तों, हमने सुबह मन को शांत करने के लिए योगा की बात की, शरीर को जगाने के लिए एक्सरसाइज की बात की, लेकिन ये सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी अगर आप इस बात का ध्यान ना रखें कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स की जो बिना किसी मुश्किल रूटीन के आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन सकती है। पहली बात, सुबह का पानी। रात भर में हमारा शरीर डिहाइड्रेशन के स्टेज में चला जाता है। जैसे ही आप उठें, बिना ब्रश किए या ब्रश करने के बाद कम से कम एक से दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है। दूसरी बात, नाश्ता छोड़ने की आदत। दफ्तर निकलने की जल्दी में या कॉलेज की भागम भाग में बहुत से लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं या सिर्फ एक कप मीठी चाय पर दिन शुरू करते हैं। ये सबसे गलत आदत है। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, जैसे उबले हुए अंडे, दलिये, ओट्स या हमारे ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स को गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तीसरी बात, स्क्रीन टाइम और धूप।

सुबह की पहली धूप में कम से कम 10 मिनट जरूर बैठिए। विटामिन डी के अलावा ये धूप आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सर्कैडियन रिदम को सेट करती है, जिससे रात को नींद अच्छी आती है। और सुबह के पहले घंटे में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचिए। छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़ी सेहत बनती हैं। किसी बदलाव को एक ही दिन में पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस रोज एक कदम आगे बढ़ाइए।

स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि हमारा और आपका आज का ये वक्त यही तक था। उम्मीद है आज का ये सुबह सवेरे आपके दिन को एक नई दिशा और एक नई एनर्जी देकर जा रहा होगा। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर सुरों और जानकारी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं लेती हूं आपसे इजाजत। तो दोस्तों, ये थी आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे अपतानी बोली में समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी बोली में रीजनल समाचार। समाचार के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है हमारे इस सुबह के खास इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छी धूप, ताजी हवा और सुकून भरी चाय के साथ शुरू हुआ होगा। जिंदगी की रफ्तार हर सुबह एक नई दिशा मांगती है, और जब हम दिन की शुरुआत थोड़ी सी जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ करते हैं तो दिन भर एक संतुलन बना रहता है। सुबह के इस वक्त चलिए सबसे पहले पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख यानी 26 सितंबर दुनिया भर के इतिहास में किन अहम पहलुओं के लिए दर्ज है।

साल 1580 में इंग्लिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक ने अपने जहाज गोल्डन हिंड के साथ पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाकर अपना सफर पूरा किया था। उस दौर में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समंदर के तूफानों को पार करना इंसानी हौसले की एक बड़ी मिसाल था। साल 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अहम रिसर्च पेपर एक मशहूर जर्मन जर्नल में पब्लिश हुआ था। इस पेपर ने फिजिक्स और समय के बारे में इंसान की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1960 में अमेरिका के इतिहास में पहली बार दो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन ने दोनों के बीच टेलीवाइज डिबेट हुई थी। इस डिबेट ने साबित किया कि जनता के सामने पब्लिक कम्युनिकेशन और उनका विजुअल इम्प्रेशन कितना असरदार होता है। साल 1983 में सोवियत ऑफिसर स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने अपने कंप्यूटर पर आए फॉल्स मिसाइल वार्निंग अलार्म को देखकर आगे हमले का आदेश नहीं दिया। उनके इस एक ठंडे दिमाग के फैसले ने पूरी दुनिया को एक संभावित न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से बचा लिया था। देखिए दोस्तों, जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो एक बात साफ समझ आती है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग हो या स्टैनिस्लाव पेट्रोव का एक पल का धैर्य, दुनिया बड़े फैसलों और एक पल की समझदारी से आगे बढ़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा ही है। जब दिन भर में जो छोटा सा फैसला समझदारी से लेते हैं, वही आगे चलकर बड़ा असर दिखाता है। तो चलिए इसी विचार के साथ सुनते हैं आज सुबह की, यानी ये इस कार्यक्रम का पहला गीत।

गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम में। दुनिया भर की बातें जानने के बाद अब आइए रुख करते हैं अपने मुल्क भारत के इतिहास की तरफ और देखते हैं 26 सितंबर हमारे देश के लिए क्यों इतना अहम है। दोस्तों, साल 1820 में समाज सुधारक, शिक्षाविद और बंगाली गद्य के जनक माने जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए जो संघर्ष किया, उसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। साल 1923 में हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन कलाकार और निर्माता देव आनंद साहब का जन्म हुआ था। उनकी अदाकारी, उनका अंदाज और उनका जिंदा दिली से बड़ा सफर आज भी हर पीढ़ी के दिलों में एक ताजा रहता है।

साल 1932 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। साल 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उनके योगदान को हमेशा आधार के साथ याद किया जाता है। साल 1989 में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी मधुर और गंभीर आवाज आज भी रेडियो सुनने वालों के दिलों को सुकून देती है। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक निष्ठा हो या सिनेमा के पर्दे पर देव आनंद का पॉजिटिव अंदाज, इन शख्सियतों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हर इंसान का अपना एक रंग होता है, अपना एक किरदार होता है। जरूरत बस इस बात की है कि हम जो भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरे मन और लगन से करें। आइए इस लगन और सुकून को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत धुन के साथ।

सुरों के इस खूबसूरत सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है हमारे आसपास हमारे राज्य और देश भर के जरूरी मुद्दों पर नजर डालने का। आइए देखते हैं आज 26 सितंबर डी अरुणाचल टाइम्स के पन्नों से कौन सी अहम खबरें हैं जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। पहली खबर है एसआईआर 2026 और चकमा हजोंग वोटर्स। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक विस्तृत पात्र भेजते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के फाइनल इलेक्टोरल रोल की समीक्षा यानी रिव्यू की मांग की है। उनका कहना है कि चंगलांग और आसपास के चकमा हजोंग इलाकों में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। समिति ने आयोग से गुजारिश की है कि इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा जांचा जाए और किसी भी पात्र नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित न हो। इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। दूसरी खबर, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम। स्टेट की अपेक्स मीडिया बॉडीज अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने ईटानगर कैपिटल रीजन में आंसू के बंद के दौरान कैपिटल न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट जोरम डोमिन के साथ हुए दुर्व्यवहार और इंटिमिडेशन की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठनों का कहना है कि निर्जुली के बागे तिनाली में ड्यूटी के दौरान जर्नलिस्ट का फोन और मोटरसाइकिल रोका जाना और उन पर दबाव बनाना प्रेस फ्रीडम पर सीधा प्रहार है। एपीसी और एपीयू डब्ल्यूजे ने आंसू नेतृत्व से अकाउंटेबिलिटी तय करने और फील्ड में मीडिया कर्मियों के सुरक्षित वातावरण की मांग की है।

0: SUMP प्रोजेक्ट के खिलाफ गांव वालों के का संघर्ष। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर सियांग और अपर सियांग के स्थानीय गांव वालों और जनजातियों संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विशाल के हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से उनके पूर्वजों की जमीन, खेती और रिहायशी बस्तियों डूबने का खतरा है। गांव वालों ने सरकार से दो टूक मांग की है कि PFR एक्टिविटीज को तुरंत रोका जाए और इस SUMP परियोजना को पूरी तरह स्क्रैप किया जाए। और अंत में आजीविका से जुड़ी एक अच्छी पहल, पशुपालन और विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और किसान परिवारों के बीच बेहतर नस्ल को पोल्ट्री चिक्स का वितरण किया गया है। इस पहल का मुख्य मकसद पहाड़ी गांवों में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है ताकि परिवार अपने घरेलू आमदनी को मजबूत कर सके। तो दोस्तों, ये थे दी अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचार जिन्होंने आज सुबह हमारे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया है। अब समय है दिन के आखिरी गीत की ओर बढ़ने का, जिसके बाद हम आपसे विदा लेंगे।
1: The best gift for sir.

0: दोस्तों इतिहास के पन्नों से लेकर आज की ताजा तरीन हलचल तक उम्मीद है सुबह का ये सफर आपके लिए जानकारी और ताजगी से भरा रहा होगा।
1: सी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ईटानगर सिलोग तागिन प्रोग्राम गाम को गलाइनिंगा बिंतम गयने से यंगरे परफॉर्मेंस ओक फंक्शन दे दे ना रिव्यू दुब मुयु आकाशवाणी ग डायरेक्टर जनरल बरिन राजीव कुमार जैन मीटिंग गो आको दुंगपाम गो पाम्बम जीतु को अलाबिम्पा लिंदुको इंडिया ग मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ओक इनोवेशन गा अलब सिंह मोदुब ओक सेकेंडरी सेक्टर लो अलब नी दे दे गा सकारी उगो पामोदुब सरकारी लोक 2014 लो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च क सिलो निंगरंगुला निंगोब सी बंगदे जीपको अला बिम्पा लिंदुको प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ओक इंडस्ट्री दे देगा अब जब सिंगमो रुमोदुब सरकारी लोक मेक इन इंडिया गा एक्सपेंड जिला सी मेक इन इंडिया 2.0 ब रिदों जीरे अला बिम्पा लिंदुको सो मेक इन इंडिया 2.0 लोक इरिंग अक्क गुला आंगु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओक इरिंग अक्क गुला आनीगो सर्विस सेक्टर गा गवर्नमेंट सिजे लोक फोकस जीरे अला बिम्पा लिंदुको अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर डिस्ट्रिक्ट लोक किलो निट ब सिंगने आको स्पीशीज ब पालिन पको अला मुयु अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेंग निमी अतुबोग सोशल मीडिया पोस्ट लोक बिम पालिन जीतुको सो नीत ब सिंगने पाने गा निशी कम्युनिटी ग नीलम क्लैन ग अमीन ब पर्बिंग जीतुको सो अमीन सी कोबिर होपू बाबराई ब पर्बिंग जीपको अला बिम पादुको सो सिंगने ग साइंटिफिक अमीन सी बगोनिया नीलमोरुम ब रिपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने मी बिम्पा को नमगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिबजब सिनंग समेन अच्छल ब दुंगदुकु अब रितोला सिजलोदे ब ऑफिशियल ब रिकॉर्ड उगु रिमानम लगा ब नी आदि चिमापने अला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने मी बिम्पा लेंदुकु सिलोलोक

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन बोली में प्रादेशिक समाचार। समाचार के इस क्रम के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस बेहद पसंदीदा और हमेशा ताजा रहने वाले कार्यक्रम यानी सदाबहार में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। हवा में हल्की ठंडक हो, सामने पहाड़ों पर तैरते सफेद बादलों हो और हाथ में गर्म चाय का कप, ऐसे लम्हों में अगर रेडियो पर पिछले दौर की कोई पुरानी धुन छिड़ जाए तो दिल अपने आप तहर सजाता है। पुराने संगीत की एक अजीब खूबी होती है दोस्तों, ये संगीत वक्त के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये और गहरा और अजीज होता चला जाता है। उस जमाने के लफ्ज, वो मीठी सरंगी, सितार और वायलिन के तार और आवाज में वो सच्चाई, ये सब मिलकर हर उस इंसान को उसके किसी पुराने लम्हे से जोड़ देते हैं जो आज की इस भागती हुई जिंदगी में कहीं पीछे छूट गया था। चाहे आप दापोरिजो में सुबनसरी नदी के किनारे बैठे हो, जीरो की वादियों में हो या ईटानगर की किसी शांत सुबह का मजा ले रहे हो, सदाबहार का ये वक्त आपका अपना वक्त है जहां हम और आप गुजरे जमाने से के सुनहरे सुरों की छाव में बैठे हैं। तो चलिए आज के इस सफर का आगाज करते हैं ये पहला खूबसूरत गीत के साथ।
1: माँ की बोतें।

गुजरे जमाने के सुरील नगमे के बाद अब एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के कार्यक्रम सदाबहार में। संगीत जब मन को शांत करता है तो दिन की तैयारियों के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास के मौसम का हाल जान लें। जो लोग दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं, दफ्तरों या खेतों के लिए निकल रहे हैं या पहाड़ों के सफर पर हैं, उन सभी के लिए प्रस्तुत है आईएमडी सेंट्रल ईटानगर द्वारा जारी किया गया आज का विस्तृत मौसम बुलेटिन। सबसे पहले रुक करते हैं हमारी राजधानी ईटानगर और कैपिटल रीजन का। आईएमडी ईटानगर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। वहीं रात और सुबह के वक्त का न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। दिन के वक्त धूप और आम दिनों से थोड़ी ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। आज दिन भर ईटानगर और आसपास के इलाकों में आकाश आमतौर पर आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सुबह की हल्की धूप के बाद दोपहर या शाम तक स्थानीय कन्वेक्शन की वजह से बादल गहरे हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राजधानी और दोराव इलाकों में एक या दो दौर में हल्की सी मध्यम बारिश या थंडर शावर होने की संभावना है। ये बारिश आमतौर पर छूतपूत और स्थानीय होगी।

सुबह के वक्त हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 80 से 85% तक दर्ज की गई है, जबकि दोपहर ढलते ढलते ये 70 से 75% के आसपास आने की उम्मीद है। इस नमी की वजह से धूप के समय हल्की उमस महसूस हो सकती है। आज सुबह सूर्योदय लगभग 5:05 पर हुआ और शाम को सूर्यास्त ठीक 5:07 पर होगा। शाम जल्दी ढलने लगती है, इसलिए अपने बाहर के काम समय पर निपटा लेने में ही समझदारी है। ईटानगर के मौसम के बाद चलिए लौटते हैं संगीत के उन दौर में, जहां गीत के अल्फाज सीधे रूह को छूते थे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और ये है आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार। किशोर कुमार जी की इस खूबसूरत गीत के बाद अब बात करते हैं हमारे पूरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों और क्षेत्रों के मौसम की। जैसा कि आईएमडी सेंटर ईटानगर और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने निर्धारित किया है, तवांग और बोमडिला के ऊंचे इलाकों में मौसम बेहद ठंडा और खुशगवार बना हुआ है। यहां न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास है। सुबह के वक्त घाटियों में घना कोहरा और मिस्ट देखने को मिल सकती है। बालुकपुंग और फुटहिल बेल्ट में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की फुहार पड़ने की अनुमान है। जीरो वैली और कुरुंगकुमे की तरफ तापमान में ठंडक बनी हुई है, लेकिन फुटहिल बेल्ट जैसे पपुमपारे और दोईमुख के इलाकों में दिन में थोड़ी गर्मी और उमस रहेगी। दोपहर बाद पहाड़ी ढालनों पर लोकलाइज्ड क्लाउड फॉर्मेशन के चलते अचानक गरज के साथ बारिश की संभावना है। जो लोग पहाड़ी सड़कों पर सफर कर रहे हैं वो हल्की फैसल को ध्यान में रखकर ड्राइव करें। पासीघाट और मैदानी से लगते इलाकों में पिछले दिनों की तरह तापमान 31 से 33 डिग्री तक जा सकता है। अपर सियांग और ट्यूटिंग के ऊंचाई वाले हिस्सों में मौसम शांत रहेगा। हालांकि दिन के ढलने पर नदी के कैचमेंट एरियाज में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नदी नालों के आसपास पानी के बहाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

पूर्वी अरुणाचल जैसे लोहित, नामसाई, चांगलांग, टेराप और लोंगडिंग के बेल्ट में दिन के वक्त तेज धूप के साथ अपेक्षाकृत गर्मी बनी रहेगी। वहीं टेराप और लोंगडिंग के पहाड़ी हिस्सों में शाम के समय थंडरस्टॉर्म और लाइट टू मॉडरेट शावर्स की आशंका है। पहाड़ी जिलों में विजिबिलिटी शाम के बाद थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए लंबे रूट के यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम चाहे धूप का हो या बारिश की फुहारों का, अगर मन में अच्छा संगीत हो तो हर मौसम सुहाना लगता है। आइए सुनते हैं किशोर दा का ये सदाबहार गीत जो आपके दिल को एक मीठी मुस्कान से भर देगा।

दोस्तों, रेडियो पर जब पुराने गीत चलते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि हमारे इस कार्यक्रम सदाबहार का समय अब यहाँ पूरा हो रहा है। उम्मीद है आज के सुनहरी सुरों और मौसम की इस तफसील भरी जानकारी ने आपकी सुबह को थोड़ा सा आसान और बेहद सुकून भरा बनाया होगा। सफर पर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी की रफ्तार पर नियंत्रण रखिए, पहाड़ों पर ड्राइव करते वक्त सुरक्षा का ध्यान रखिए और दिन भर के कामों के बीच थोड़ा वक्त खुद के लिए भी जरूर निकालिए। सदाबहार से अब आपका ये दोस्त आपसे इजाजत लेता है, लेकिन संगीत समाचार और रोचक कार्यक्रमों का सिलसिला आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
1: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
2: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
1: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर, और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
7: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
8: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर्ट

0: एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से प्रसारित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार। समाचार के इस क्रम के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है हमारी शिक्षा प्रत और सूचना विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ, हेलो ईटानगर, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे याजू। दोस्तों, सुबह की धूप जब पहाड़ों की चोटियों पर धीरे धीरे उतरती है और हमारी ये वादियां हवा के झोंकों के साथ लहराती है, तो मन में सबसे पहला एहसास एक गहरा सुकून का होता है। हम और आप कितने खुश किस्मत है कि हम ऐसी जमीन पर सांस ले रहे हैं जहां चारों तरफ प्रकृति की शांति और जीवन का गीत है। लेकिन जब हम रेडियो पर देश दुनिया की खबरें सुनते हैं तो एक अहम सवाल हम सबके दिलों में झांकता है, क्या पूरी दुनिया में हर इंसान, हर बच्चा इतनी सुकून और सुरक्षा के साथ सांस ले पा रहा है। हेलो ईटानगर में हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें करना नहीं बल्कि उन अहम विषयों को समझना है जो हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। आज 26 सितंबर है और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर आज पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, ये दिन कोई आम तारीख नहीं है, ये पूरी इंसानियत के सामने खड़ा वो आईना है जो हमें याद दिलाता है कि परमाणु हथियार किसी सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि समूचे मानव जीवन के अस्तित्व पर एक गहरा संकट है। आइए इस विषय की गहराई में उतरने से पहले सुनते हैं एक बेहद शांत और प्रेरणादायक गीत जो शांति और रोशनी का पैगाम लेकर आता है।

गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। दोस्तों, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये तो बड़े बड़े देशों की दफ्तरों, सैनिक छावनियों और राजनीतिक मेज की बातें हैं। हमारे जैसा आम नागरिक इसे कैसे जुड़ा है? लेकिन इतिहास

गवाह है कि परमाणु हथियार जब चलते हैं तो नेता या सेनाएं नहीं मरती, बेगुनाह आम इंसान, मासूम बच्चे और सदियों पुरानी बस्तियां पल भर में राख बन जाती है। साल 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी इस भावभक्ति आग का शिकार हुए थे। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर लाखों जानें चली गई थी और उसके रेडियो एक्टिव रेडिएशन का दुष्परिणाम अगले कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों ने अपने जिस्म और बीमारियों के रूप में भुगता। उसी दर्द को महसूस करते हुए संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने दिसंबर 2013 में एक विशेष प्रस्ताव रिजोल्यूशन 6832 पास किया और हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूरे खात्मे के लिए समर्पित दिन घोषित किया गया। साल 2014 से यह दिन लगातार दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य मकसद यह है कि विश्व के सभी देश, उनके नेता, शोधकर्ता और आम जनता ये समझ सके कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट यानी परमाणु निशस्त्रीकरण कोई चुनाव नहीं बल्कि मानव जाति के बचे रहने की सबसे बड़ी जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का यह स्पष्ट मानना है कि जब हम परमाणु हथियार मौजूद है तब तक उनके गलत इस्तेमाल या अचानक किसी तकनीकी खराबी के चलते युद्ध छिड़ने का खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहेगा। इन हथियारों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इनका पूरी तरह से जमीन से खत्मा। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और ये प्रस्तुति है हेलो ईटानगर। अब आइए इस विषय के एक और बेहद अहम पहलू पर नजर डालते हैं, इसका आर्थिक और पर्यावरण पर असर। अक्सर हम सोचते हैं कि हथियार सिर्फ युद्ध के वक्त नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परमाणु हथियार शांति के समय में भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अब अंदाजा लगाइए, दुनिया भर में हर साल अरबों खरबों डॉलर सिर्फ इन हथियारों को बनाने, उन्हें मेंटेन करने और उन्हें आधुनिक करने पर खर्च कर दिए जाते हैं। अगर ये दौलत, यही तकनीक और यही रिसोर्स दुनिया के गरीब देशों में अच्छे स्कूल्स बनाने, बेहतर हॉस्पिटल्स खोलने, साफ पीने का पानी मुहैया करवाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में लगाए जाते, तो आज हमारे पृथ्वी का चेहरा कितना खुशहाल होता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई समझौते हुए हैं, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और हाल ही के वर्षों में आई ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो परमाणु हथियारों को गैर कानूनी ठहराती है। लेकिन कागजी समझौता से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि विश्व के ताकतवर देश आपस के अविश्वास को छोड़कर संवाद और निशस्त्रीकरण की टेबल पर बैठे, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई जीतने वाला नहीं होता। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि अगर एक छोटा सा न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट भी हुआ तो आकाश में धुएं और राख की ऐसी मोटी चादर छा जाएगी जिससे सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में भूखमारी फैल जाएगी। यानी फैसला किसी एक बॉर्डर पर होगा, लेकिन उसका दुख हमारे पहाड़ों और घाटियों तक हर जीव को झेलना पड़ेगा। इसलिए शांति की मांग करना किसी एक शहर या सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हर उस आम इंसान का सवाल है जो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित आकाश चाहता है। इसी विचार को दिल में रखते हुए आइए सुनते हैं संगीत की एक ऐसी दिन जो दिल को उम्मीद और खूबसूरत बना दे।

0: तो उसी इसी के साथ हमारे शिक्षा प्रद कार्यक्रम हेलो ईटानगर यही समापन होता है। अब समय हो चला है राष्ट्रीय समाचार का। अगले क्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में। समाचार बुलेटिन के बाद ठीक 9:10 पर प्रसारित किया जाएगा एक विशेष कार्यक्रम, स्पेशल सीरीज कम्पलीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी। और इस विशेष श्रृंखला के बाद ठीक 10 आप सभी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे कुछ मधुर और चुने हुए हिंदी फिल्मी गीत। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग रूस और ईरान की विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुद्दों, खाड़ी संकट और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग पर चर्चा की। भारत ने इसी महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने भाग लिया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में सेवा यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों की एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कदम गैर कानूनी है और इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और बढ़ जाएगी। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमरीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित कर दिया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीम अपने अपने फाइनल मैच खेलेगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एशियाई खेलों के सातवें दिन कल भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत दो स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly UNGA in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly brings together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the sustainable development goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister S. Jaishankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jaishankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of ongoing issues. Mr. Jaishankar also met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on the margins of the high-level UNGA session. They discussed the latest developments with regard to the Gulf conflict. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers Meeting in New Delhi on 26th of May this year. External Affairs Ministry said in a social media post that India Coast Guard ship Shaunak has sailed from Chennai with sea riders from all four Quad countries. It said the mission strengthens maritime cooperation and interoperability, reflecting the Quad's shared commitment to a free and open Indo-Pacific. Iran has offered to reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program in 7 days if the United States lifts its naval blockade of Iranian ports, waives sanctions on Iranian oil sales, and observes a ceasefire that would include Lebanon. The India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has said that due to the depression over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha, very heavy rainfall is likely to prevail at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours. Indian Railways has approved the introduction of a new tri-weekly Amrit Bharat Express between Bhuj in Gujarat and Barauni in Bihar. The new service will cover a distance of 2,532 kilometers, connecting important destinations across Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar. Indian marathon runner Savan Barwal created history at the Asian Games 2026 by winning a silver medal in the men's marathon event, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to register his personal best and set a new national record in the men's marathon final. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरतनाज। नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरतनाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
2: शुक्रिया फरहत।
0: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
1: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
0: जी।
1: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
0: जी सर।
1: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
0: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
2: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
0: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
0: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिमकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
0: जी।
1: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में इनसेट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है। ये उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं
0: जी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
2: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे हम, मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहाँ आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में दो मेडल हासिल कर सकती है, मनु भाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को। और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
0: राजीव जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ

0: कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
1: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए,
0: जी
1: पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती हैं और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
0: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
2: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
0: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास, और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
3: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो तो ये सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
3: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए अभी, सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 25% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काईरूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
0: जी।
3: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर, वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
0: और अब राजारमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
1: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाए, और इसरो ने वो कर दिखाया है।
0: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
1: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं, हाँ, तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो, और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए
0: जी। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
1: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है, और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है, हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं
0: जी। अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
3: उसके टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
0: जी।
3: और जब उसको लॉन्च किया Vikram-1 को, सतीश स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था, जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
0: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें, तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
3: चंद्रमा पे जाकर वहां से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
0: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
1: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियंस पैदा करें, शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
0: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा होगा?
1: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
0: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी, क्या होना चाहिए?
3: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही छोटा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में, तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी, ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी, क्योंकि ये तो स्टूडेंट थे, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
0: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
3: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है, और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
0: खुद को देखकर करना पड़ता है राजरमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी शूटर्स के साथ, जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है, वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया है। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी, आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
0: तो एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
1: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारी महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम्स में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे

0: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो
1: जी
0: एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है,
1: जी
0: और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है।
1: जी
0: अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने की मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज कर रहते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था, पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर्स है, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये, और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
0: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है, एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाएं और बेहतर ही हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं, ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं।
1: और अगर बात अब 2047 की करते हैं तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: जब मैंने पहले पढ़ा था गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
1: जी राजरमन जी,
0: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा, और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं, उनको कहाँ जाना है, इसकी थोड़ी तो उनको जो

0: कल्पना हो और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
1: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
0: हमने जब इनसाइट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसाइट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर ले, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: जी राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
2: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो then we will find the solutions to all our problems.
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े?
0: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजीम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना

0: है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
2: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी हैं तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
0: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

अगर बात चलने की हो रही है तो हमें एक चलना यहाँ पर अलग तरह का दिखाई दे रहा है। सेवा संकल्प अभियान चल रहा है हमारे देश में, आपको मालूम है ना, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? मेन मोटिव ये है कि मतलब जो भी केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, अलग अलग जन सेवाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में, विकास में, वो सबको पता लग पाए। और स्कूलों में, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो स्कूलों में मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर चित्रकला प्रदर्शनी हो, निबंध लेखन हो, वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिताएं हो, और इसके साथ साथ पीएम ई विद्या योजना भी, जिसमें जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको डिजिटल इंडिया और साथ में स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सबको शिक्षा के साथ जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, ये है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य। तो कब से कब तक चल रहा है हमारे देश में ये? 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 25 वर्षों की लोक सेवा पर आधारित विशेष श्रृंखला। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब घड़ी समय हो चुका है सुरों की एक बेहद मधुर और महफिल सजाने का, तो चलिए इस सिलसिले को आगाज करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिन। समाचार के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अब शुरू होता है हमारा सुबह के ट्रांसमिशन का सबसे अजीज और सबसे खास सिलसिला यानी रेडियो ऑन डिमांड का। सुबह से लेकर अब तक हमने विषय जानकारी और चर्चा की बातें की दोस्तों, लेकिन अब अगले कुछ वक्त पूरी तरह आपके नाम है, क्योंकि ये कार्यक्रम हम नहीं बनाते, ये प्रस्तुति तैयार होती है आपके भेजे हुए मैसेजेस फरमाइशों से। तो रेडियो सुनने का असल आनंद ही यही है, जब किसी दूसरे शहर या गांव में बैठे श्रोता कोई गीत चुनता है और वो सुर यहां हम सबके दिलों को छू जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा नगमों की ये खूबसूरत नली।

सबसे पहले रुक करते हैं हमारे रेगुलर श्रोता शिवा गोप जी और उनके पूरे परिवार की तरफ, जो हमेशा की तरह चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी फरमाइश पर पेश है साल 1998 की फिल्म सात रंग के सपने से ये मीठा नगमा।

शिवा गोप जी और परिवार के बाद अब चलते हैं पड़ोसी राज्य असम की तरफ। असम से दिया बसुमतारी जी ने हमारे स्टूडियो में अपना संदेश भेजा है और उनकी पसंद का गीत है साल 1990 की फिल्म मेरे सजना साथ निभाना। दिया की फरमाइश पर प्रस्तुत है अनुराधा उदित नारायण और साधना सरगम की गाया हुआ ये गीत कंगना कुमारी कंगना।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों अगली फरमाइश आई है आसाम के धेमाजी जिले के जोनाई मैसाकी सपोरी से हमारे श्रोता बिमल बसमतारी जी की तरफ से। बिमल जी ने इस गीत को अपने सभी दोस्तों और स्नेहजनों के नाम डेडिकेट किया है। फिल्म है करण अर्जुन और संगीत राजेश रोशन का। बिमल जी और उनके सभी दोस्तों के लिए पेश है जय मां काली।
1: शङ्खं सन्दधति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषा।

भक्ति और शक्ति के इस गीत के बाद अब थोड़ा सा रिदम बदलते हैं और रुक करते हैं एक मॉडर्न बीट्स वाले ट्रैक की तरफ। असम से अंजलि और अश्मिता जी ने हमें लिखा है और उनकी रिक्वेस्ट पर अब सुनते हैं बादशाह का ये पॉपुलर ट्रैक दिल्ली से मनाली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक टू रेडियो ऑन डिमांड दोस्तों, गोलाघाट असम से हमारे तीन श्रोता जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है, रोमेश, रूनू और लकी जी एक साथ जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में। उन तीनों की फरमाइश पर चलिए सुनते हैं साल 2000 की बेहद कामयाब फिल्म धड़कन से अलका याग्निक जी का गाया हुआ ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज 26 सितंबर का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद अहम है। आज जन्म दिवस है हिंदी सिनेमा के उस फैनकर का, जिन्हें दुनिया हमेशा एवरग्रीन स्टार के नाम से याद करती है। देव आनंद साहब, साल 1923 में जन्मे देव आनंद साहब ने सिर्फ फिल्मों में अदाकारी नहीं की, बल्कि सिनेमा को एक नया तेवर, एक नई रफ्तार और एक ऐसी जिंदगी दी जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने नवकेतन फिल्म्स की बुनियाद रखकर ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। उनका चलने का अंदाज, उनके डायलॉग्स बोलने का ढंग और मुसीबतों के आगे हमेशा मुस्कुराकर आगे बढ़ने का जज्बा, ये वही अदा थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए एवरग्रीन बना दिया। आज उनके इस जन्मदिवस के मौके पर हमारे नियमित श्रोता जोगेंद्र, सोनाली और दोरम किरी ने उन्हें याद करते हुए उनके एक लाजवाब गीत की फरमाइश की है। साल 1975 की फिल्म वरुण से, जिसे आरडी बर्मन साहब के संगीत पर किशोर कुमार जी ने गाया था, आइए सुनते हैं देव आनंद साहब को समर्पित ये नगमा रुक।

देवानंद साहब के उस सुनहरे दौर से निकलकर अब लौटते हैं आज के दौर के एक बेहद खूबसूरत नगमे की तरफ। हमारी एक नियमित श्रोता है हितेंद्र दास जी, जो असम से लगातार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम सुनते हैं। उन्होंने हमें संदेश भेजकर सिर्फ इतना कहा था कि रेडियो पर उनके नाम का एक शाउट आउट दिया जाए। तो हितेंद्र जी, आपके इस लगातार साथ और अपनेपन के लिए हमारी तरफ से ये गीत खास आपको डेडिकेट किया जा रहा है, हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभावान गायक रितो रिबा और एवरग्रीन श्रेया घोषाल की आवाज में ये बेहद मधुर गीत। उम्मीद है हितेंद्र जी, आपको हमारी ये पसंद जरूर अच्छी लगेगी।

तरीबा और श्रेया घोषाल के इस प्यारे गीत के बाद अब अगला रुख करते हैं हमारे और नियमित श्रोता की तरफ असम के हेलम से। हमारे डेली लिसनर ज्योति सुरीन ने हमें लिखा है। ज्योति ने साल 2005 की फिल्म सिलसिले से सुनिधि चौहान का गाया हुआ एक बेहद गहरी और जज्बाती गीत सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है। ज्योति जी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये नगमा।

दोस्तों फरमाइशों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वक्त की कमी के चलते आज हम और गीत शामिल नहीं कर पा रहे हैं। जिन श्रोताओं के गीत रह गए हैं उनसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। आप निराश ना हो, कल सुबह अपनी फरमाइश हमें दोबारा भेज सकते हैं, हम उन्हें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ रेडियो ऑन डिमांड और सुबह का ट्रांसमिशन यही संपन्न होता है। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता तनातुम। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दंपा के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी उल्लेख किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल पेशेवरों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:11 हो रहे हैं। इसके साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इससे पहले आप पहली प्रसारण सभा में जुड़े हुए थे आरजे या जोजे के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं अपने आरजे साथी यानी मेरे साथ दांबा के साथ। और दोस्तों हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। और अब चलिए दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को, और पेश कर रहे हैं आपके लिए पहला गीत कार्यक्रम में फिल्म टू स्टेट से, और गीत के बोल है चांदनिया, और इस गीत को आवाज दी है के मोहन और यशिता शर्मा ने, और म्यूजिक डायरेक्ट किया है शंकर एहसान लोई ने, और इस गीत के लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत टू स्टेट्स फिल्म से, आकृति कक्कर, शाहिद मालिया और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में, और चलिए कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं और एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म सलाम इश्क। और गीत के बोल है दिल क्या करे, और इस गीत को गाया है आदनान शामी ने। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में और ये एक रोमांटिक मल्टी स्टोरी फिल्म है जिसमें कई कपल्स की अलग अलग लव स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी हैं। फिल्म में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय खन्ना, विद्या बालन, जॉन अब्राहम, गोविंदा, अनिल कपूर जैसे बड़े कलाकार हैं। फिल्म का मेन टीम है प्यार, इंतजार, जुदाई और रिश्तों की अहमियत। तो चलिए इसी के साथ ही आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दिल क्या करे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। और कार्यक्रम में चलिए अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत लैला मजनू फिल्म से। जी हाँ, गीत के बोल है ओ मेरी लैला, और इस गीत को आवाज दी है अदीब असलम और ज्योतिका तंगरी ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स एंड वेलकम टू आकाशवाणी ईटानगर। यू आर लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक वेयर वी विल एंजॉय सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव सॉन्ग्स टुगेदर एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव योर कंपनी। सो लेट्स बिगिन टुडेज म्यूजिकल जर्नी। टुडे लेट्स फॉरगेट अबाउट आवर बिजी शेड्यूल्स फॉर अ लिटिल व्हाइल। इमेजिन यू आर समवेयर पीसफुल, नो डेडलाइंस, नो फोन कॉल्स, नो वन आस्किंग यू डिड यू फिनिश दैट वर्क। साउंड्स नाइस, डजंट इट? वेल, वी कांट एक्चुअली टेक यू देयर, बट वी कैन टेक यू देयर थ्रू म्यूजिक। लेट्स बिगिन विद आइलैंड इन द सन बाय वीजर।

0: And that was our final song. I hope you enjoyed today's little escape through music, and that brings us to the end of today's Western music program. I hope you enjoyed today's little escape through music. Thank you for listening to Akashvani Itanagar. Take care, enjoy your day, and I will see you again with more music.
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
1: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी
3: 25। ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: देखा?
5: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
7: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: Saving करने की भी यही उम्र है।
9: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
10: I know na.
9: RBI कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
12: दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
13: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
13: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में

इतनी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अरे दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की बारात। दोस्तों, कार्यक्रम यादों की बारात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर हम आपके लिए प्ले करेंगे पुराने गीत। और कार्यक्रम में आज के सेगमेंट पर आपके लिए हमने लिया है गीत श्री 420 फिल्म से। जी हाँ, और गीत के बोल है प्यार हुआ इकरार हुआ, और इस गीत को आवाज दी है मन्ना दे और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 सितंबर 1955 को, और इस क्लासिक फिल्म में फिल्म के मुख्य भूमिकाएं हैं राज कपूर, नरगिस और नदीरा, और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। तो चलिए पेश कर रहे हैं पहला गीत आपके लिए।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मुकेश की आवाज में फिल्म श्री 420 से। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत चलती का नाम गारी फिल्म से। गीत के बोल है बाबू समझो इशारे और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और मन्ना डे ने। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यन बोस और इसमें किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनुप कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। फिल्म अपनी कॉमेडी, मस्ती और जबरदस्त टाइमिंग के लिए मशहूर है। कहानी में तीन भाई और उनकी जिंदगी के आसपास रोमांस और कॉमेडी घूमती है। जी हाँ, और किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी फिल्म की सबसे यादगार खासियतों में से एक है। किशोर कुमार की कॉमिक एक्टिंग और सिंगिंग ने फिल्म को एक अलग ही अंदाज दिया और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की यादगार कॉमेडी फिल्म्स में गिना जाता है। तो पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत फिल्म चलती का नाम गारी से।
1: बाजू

दोस्तों, फौजी भाइयों और बहनों के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये सेगमेंट हमने हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए हम खास कर रखे हैं। और तो चलिए, देर ना करते हुए पेश कर रहे हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए गीत फिल्म हम हिंदुस्तानी से, और गीत के बोल ही छोरों कल की बात है। और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम गीत माला में आपके लिए पेश कर रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म से गीत। गीत के बोल है मोहब्बत हो गई है और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और पलक मुच्छल ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम गीत माला में आपके लिए पेश कर रहे हैं दबंग फिल्म से टाइटल ट्रैक। और इस टाइटल ट्रैक को आवाज दी है सुखविंदर सिंह और वाजिद खान ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों, उम्र के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में। और इससे पहले आप सुन रहे थे गीत दबंग फिल्म से। जी हाँ, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं RR फिल्म से गीत। गीत के बोल है शोले और इस गीत को आवाज दी है विशाल मिश्रा, वेनी दयाल, सहिती जगंती और हरिका नारायण ने। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन।

शदा आप सभी पहुंची भाइयों और बहनों को दिल से सलाम। आप अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत करते हैं। आपकी हिम्मत, कुर्बानी और देशभक्ति को दिल से नमन है। आप सरहद पार मजबूरी से कर रहे हैं, तभी हम अपने घरों में सुकून से रहते हैं। आप हो तो हिंदुस्तान महफूज है। दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences, and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastava, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kerala today. Mr. Shah will inaugurate women's empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri in Kollam district. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication. The India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has said that due to the depression over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha, very heavy rainfall is likely to prevail at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Indian women's kabaddi team clinched gold after beating Iran. The Indian women went on an unbeaten run throughout their campaign. This historic victory marked India's third gold medal of the ongoing Asiad competition, following earlier triumphs by the women's cricket team and the shooting duo of Suruchi Singh Pogat and Kamaljeet in the 10-meter air pistol mixed team event. India won the silver medal in the women's 50-meter rifle three positions team event at the Asian Games today. The trio of Tilutama Sen, Vidarsha Vinod and Ashish Choksi scored 1,763 points, finishing behind China, which secured gold with the game's record, 1,773 points. Meanwhile, Indian squash players delivered a strong performance at the Asian Games, with teenager Anahat Singh reaching the women's singles final after a remarkable comeback against Japan's world number 6, Satoma Watanabe. With this, India stands on 12th position with a total of 27 medals, including 3 gold, 11 silver and 13 bronze. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों, कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s टू 80s की। जी हां दोस्तों, इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी उन पुरानी यादों की सफर की ओर, वो गाने जो आज भी खास है और जिंदा है। तो दोस्तों, पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आराधना से। गीत के बोल है खोरा कागज था और इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म किस्मत से। आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और मैं हूँ आपके आरजे साथी दांपक। और अब चलिए आपके लिए प्रस्तुत कर रहे गीत शान फिल्म से। दोस्तों गीत के बोल हैं जानू मेरी जान और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
11: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मिस्टर इंडिया फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं रामिका फिल्म से गीत। गीत के बोल है बाहों में चले आओ, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। जी हाँ, नए दौर के गीत और आपके लिए पेश कर रहे हैं अब गीत जर्सी फिल्म से। गीत के बोल है मैया मैनू और इस गीत को गाया है सचेत तंदर ने।
1: मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया कल।
2: यहाँ इधर की उधर हो जाए।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक गीत विशाल मिश्रा और राजशेखर की आवाज में फिल्म एनिमल से, और अब प्रस्तुत है आपने गीत धड़क 2 फिल्म से। गीत के बोल है प्रीत रे और इसकी का आवाज दी है दर्शन रवाल, जनिता गांधी और रोचक कौली ने।

दोस्तों के साथ ये कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मीडिया न्यूज तथा दोपहर समाचार।

0: निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
4: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
0: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
5: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
6: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
5: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
7: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
5: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शुदा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए पेश कर रहे हैं आपके लिए पहला गीत फिल्म हनीमून से। गीत के बोल है आधा तेरा दिल, और इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पोटवाल और अमित कुमार ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल तेरा आशिक फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म रिलीज हुई थी 1993 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है सलमान खान, माधुरी दीक्षित, कादर खान और अनुपम खेर। दोस्तों, फिल्म की केमिस्ट्री सलमान और माधुरी यानी विजय और सोनिया के रूप में दोनों की रोमांटिक जोड़ी फिल्म की बड़ी खासियत है। कहानी में डांसिंग स्कूल का एंगल है जहां विजय और सोनिया एक दूसरे के करीब आते हैं और कॉमेडी और कन्फ्यूजन भी साथ में है। सोनिया का सावित्री देवी का रूप लेना कहानी में मजेदार सिचुएशंस और कन्फ्यूजन पैदा करती है। नदीम शोबान का संगीत फिल्म का म्यूजिक 90s के रोमांटिक अंदाज को खूबसूरती से दर्शाता है। टाइटल

0: सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: HIV, संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
1: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। और चलिए, आपके लिए पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में गीत फिल्म खूबसूरत से, और गीत के बोल हैं घूंघट में चांद, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे मिश्मी कमान और तय कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और इस सेगमेंट पर आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म बैड न्यूज से। गीत के बोल है तौबा और इस गीत को गाया है करण औजला ने।

0: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार और इसके तुरंत बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर लेट मनी चार तारीख होनीबार इरुमा के वांचो साय का होवांग वांगना होवांग ए का हो पाई फाले मंजुई जामे खमे जीरो तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल तो हक्के मा गवर्नर केटी परनाइक ए का मखंग ए पांगनुली वै सिंग चौक के राइले जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक निन के मखंग ए चारन सनरन थम ए होमेते के मोंगते साय का ngai ल वनंग कपू दवन ले गवर्नर हया पोन पो इंडिया अंक टू सो खाखा मा अटाई के जाऊ ले अचोक के बोमा हले के खंगे खा पाख खसे थम जोंग तमा अफो असो अंगचु कपू लवन ले हयमा साइपाका पा थम फै वन रे के मचु गवर्नर हले माइमोक माइसा ले ngobak khaile akale देरानातुं गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर अंके हिंदी डिपार्टमेंट ए मनी हया कॉलेज अंके सिल्वर जुबली हॉल मा तंपाई जुबली हॉल मा हिंदी पखवारा वेलीडिक्टरी टू सो अटू जाले हयामा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी खामा आखो के डॉक्टर तुम्बोम रिबा जोमो लिली ए हया टू सो ओकम के मा डेस नोतम हनपक मा हिंदी का मोटो बकु हैते पोइ लिके बामा ngai lewan le chie hindi makhang e mali mali khanak nu ba ma atan le thampu lewan ke bo ma haya phai tam le माचाई मा का चू अपू अचांग ले थामंग का मोट ले चू वन ले ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट टोके डिपार्टमेंट ऑफ वोमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ची मखांग मनी पासी खाटो राष्ट्रीय पोषण मा 2026 फाइ के आंग अंगन का उत्सव लेके टू सो अटू अजा के बो मा मिशन वत्सल्य हिया मिशन शक्ति नी खा मा स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग चुआ ngot le hayama deputy commissioner sonalika jivani boma मामा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खाटोका अचोंगबोंग थामले हाकले हायमा आईसीडीएस डिप्टी डायरेक्टर बोमा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर चुचांगके एमटी पाडुंग ए नाउसम तंगसा मैले थामके रोंगमा अंगन का उत्सव खाखा खाके तुसो योचांग फुलवनले चिए डिस्ट्रिक्ट मा मिशन वात्सल्य हेया मिशन शक्ति निखामा वेलफेयर मोलम सलम अखाउ आंग डिपार्टमेंट बुबामा आसाम ले मकोटी मई वै लेवन ले चे हल के सत मोट बामा अतिका शो आंग स्टेक होल्डर्स बुहान पकमा मालदी डेवलपमेंटल व्हाट्सएप ग्रुप चु रिंग थम कली लिचु वन ले हले से लम ले अफो असो के खोमा डब्ल्यू सी डी डिपार्टमेंट तो डी सी सोनालिका एचु मईपू ले चोकले चे डिपार्टमेंट फाइ नौतम ले मोखाई ले अका के बोमा नाउ सम रोंग मा ना मई आंग फील लेवल सत मोट हान पकमा इंटर डिपार्टमेंटल आसाम ले मकोटी मई वै लिचु काले मनी नामसाई के वी के मा खाना नुए ओचम आंग ना खतले पोल्ट्री प्रोजेक्ट खामा ए आई सी आर पी ची मखांग ए मानरा मी मिहक पुनी बन बामा औसत थुम सबन अचत फै दमले कालिंगर ब्राउन लेके औसाबु यात्ता होनी जाऊ आना चाहिए गोले हले ओ साइंटिफिक कॉलम मा चम के बोमा हले केम खंग ए खनक नु पंचु ना मे को ले टू जा ले नेपाल प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र सा ए हिमालयन रीजन मा टीचोंग मोलेन ले हाई के खोमा नेपाल इंडिया बोमा चाइना ले असम ले हिमालयन होनुई अंके रंगविन रान बामा नौतम ले मोक कली ले अकाले नेपाल पीएम सा ए हले मनी थम्पुली अताल के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू सो ओकम के मा हिमालयन चावान तो रंगविन रान मुक्काम ले है के खांग ए पोपू लेवन ले चीए हजार राय ले सेटेलाइट डेटा टेक्निकल एक्सपर्टिस ले अले अताई के बोमा नौकरम बामा खोंगपोंग चाय का निंग के बामा चू अता अता हाथो होंगा ले ngong kamot le chu wan le सेप्टेम्बर चाताम खांगे चाली तारीख कपले मिजोरम तो आइजोल मा अतु ओजाके नॉर्थ ईस्ट रीजनल मुईथाई चैंपियनशिप 2026 मा अरुणाचल प्रदेश से गोल अनि सिल्वर टूटा बोमा ब्रॉन्ज मेडल टूटा लेलले हले गोल्ड मेडल्स ट्वाकपुली बन अता बोमा ट्वाकपुली अजोक माले गोयुम रीराम हिया Jumrak lika ni elatle haboma Twakpuram Annat Khama Silver Medal Kigo Yoka e andole Twakpuramata Khama Bronze Medal Marjum Riramelatle haboma Asian Games 2026 ma Men's Marathon Event ma India e Rangpuni Ali like ba ma Indian Marathon Rikmi Savan Barwal e Silver Medal Lachukle Halaway Indian Shiko Kabaddi Team Tham Echu 2026 Asian Games Ma Iran To Atakle Gold Medal Latle Anyi Kaka Ho Iwai Ija Akashwani Itanagar Kaho Phay Machu
2: HIV Kakli Bama Hektik La Yang Sing Thay Ba Hayaway Honu Changpu HIV Kak Halake Kakli Phayke Jamaike Aji Hokan Holi Chitaile Jipamke Haning Kakmi Totap Doke Matkul Makhange Yang Tabba Antole Honuanke Hosa Tole Ataile Parale Aka Thamhai Hayakak Tamle Ngotongke Jak Asap Aponke Tamle Saklingke Munkhau Munsong Ezatkeningke Khange Le Mantarai HIV Kak Taida Chale Pannoko Haning ke bama pongpon ma yangsing yanglap thai ba kak lak ring le amai le san no le ngawang kapai HIV kak li thong ta ra haning ke bama atata ang apono le ko kak tai dai chale ban ke boma atata to chu ta chak ta kon hayaba ma pangnu sing se thai ba National AIDS Helpline 1097 ma tikto to kai eya ka pangnu san pak ma le DHS Nahalugan Toke, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Chimakhange Ahile, Kha Kha Kha Kha Chu Iwai.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए प्ले कर रहे हैं गीत मौसम फिल्म से। गीत के बोल है रब्बा और इस गीत को गाया है शाहिद मालिया ने।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और कार्यक्रम में आप चलिए आपके लिए पेश कर रहे हैं आप क्रॉस फिल्म से गीत। गीत के बोल है सौदेबाजी और इस गीत को गाया है अनुपम अमोद ने।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: 900 ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। और इससे पहले आप सुन रहे थे गीत आक्रोश फिल्म से, और आपको बता दो कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ईदू मिसमे श्रोताओं का समाचार।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है ईदू मिसमे श्रोताओं का कार्यक्रम।
5: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर सेलापुची जानुलो एहो मानुलिनी एतानिची ईदमिशमी आहोला के जी दरगालंबो यको बथो आसामी मबे आशे में यतान दत्ताची इमुके बा अतगा इदाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लुटनेन जनरल रिटायर्ड केटी परनायक में बुनी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरोती कोची म्यूजिक फेस्टिवल मा गिबा महो लगाने आ फेस्टिवल में इमुके बा एरोगा जिगा अरोगादा लाइबादा आहोगा ईटानगर डायनातुंग गवर्नमेंट कॉलेज माची हिंदी डिपार्टमेंट में बुनी आ कॉलेज माची जुबली हॉल माने हिंदी पखवाड़ा इनी एनांदोगा माची हिंदी डिपार्टमेंट माची हेता डॉक्टर तुम्बुम रिबा जामोलेली में चिचाय बने हिंदी में इंडिया टिका एम मा चिचाओगा जिगा आरोगा लाइबदा आहोगा आतिकाची इमू के बने हिंदी थो आसागा जिम्रो बहाना ताना बने थो खाने का जा ट्राइबल एको बो आसाची नाना डॉक्टर लिली में लाओ बदा आहोगा राष्ट्रीय पोषण माह को माने ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट माचे वुमेन दोन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बुनी पासीघाट माने आगन का उत्सव अखगा मा देशी सोनालिका जीवानी आईसीडीएस डिप्टी डायरेक्टर दोने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एम ती पादुंग दोने किसा अजालम्ब्रो उखोगेगा बदा लाहोगा डिपार्टमेंट आलम्ब्रो में जरगाव के बने व्हाट्सएप ग्रुप के आज तेव अरुण दगादा लाए बा प्रोग्राम मा दिसी में भी छिछाए बने वुमेन दो ने चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अरुण दा डिपार्टमेंट आलम्ब्रो रेगा ते ने अले प्रोग्राम आखाने का चाहे प्रभुदा लाए बदा आहोगा नामसाई कृषि विज्ञान केंद्र में बुनी आया तिगाची मंगारो एतो मया इमो आलम्ब्रो बगा कालिंग ब्राउन लाएगा माउंट ब्राउनी एतो आ अपिगा बदा आहोगा मैं आगुतु के मैं मैं दो आतुआडगा चाताओ के बने इंडिया नेपाल दोने चाइना में हिमालयन क्लाइमेट मैकेनिज्म के अजी तेजी से ने नेपालीस प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह में बुनी बु यही हो के लिए ना बा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग आखगा मची चाहे बा महो लाइ बदा आहोगा नागालैंड मची मोकुक चुंग अतिका मा मा आलुया इतो के मैं हुलुखिनी जी के इमु शिगा बदा ने आतिकाचे एस प्याजा बासुप्रा के जुमे ओना लगादा आहोगा आ महो एडिशनल एस प्याजा बोंगलांग चांग में हेता ने टीम में आ आशुची पुआ सुपगम बदा आहोगा कपिहो कपिनु पहो ने सावन बारवाल में इंडिया के बने एशियन गेम्स तावमगामाचे मैराथन थोमगामा ने सिल्वर मेडल आने त्याबदा आहोगा आ महो इंडिया माचे याकू कबड्डी टीम में ईरान आने गए ने गोल्ड मेडल ची ओगाम बदा ला होगा ऐसा नीचे ईद मिसमी आहो अनिमा हो दबाए ऐसा ता ला हो गए अंजी इंडिया में ची ओगो के एलामामा माओकास यूनिट इलेक्ट्रिक पावर आंधुमा चिगा नाओ के बने पीएम सूर्यगौर मुफ्त बिजली योजना पीएमएस जीएमबीवाई लाएगा स्कीम में गए आयोगा जिदा ला होगा सेवा संकल्प अभियान कोकोमा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे पावर डिपार्टमेंट में आ स्कीम जोने वीप अरुणाचल प्रदेश अधिकारी इमु लाके वचा एचाला पुची जिहुलु माचे ने इगावे माचाला पुची जिहुमु माचे निलीबा अरुणाचल प्रदेश अधिकार ब्रह्म सेवा सेतु कैंप अखगा ला होगा कैंप अखगा ममा अमु जुटेगा टेबल गए स्कीम चिपो लाकेगा टेबल गए स्कीम ग्राह के बाद टेबल गए अदोने आमे तांगा बैंक ची टेबुल के अखगा ला होगा नैम

0: में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं लुटेरा फिल्म से गीत। दोस्तों गीत के बोल हैं मोंटारे और इस गीत को आवाज दी है अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे मंजू जी। दोस्तों हमारे इसी दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गैर अतर तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दांपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का एक बार फिर से तांगसा डायरेक्ट न्यूज के बाद अरुण एफएम प्रसारण सभा में। थैंक यू सो मच दंपक जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत सुहाना बीते। दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा में। बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 4:28 हो रहे हैं और ये भी जान लीजिए कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक पंचानंद डोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा और मैं हूं आपके साथ ही आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो।

0: का भरपूर एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों के साथ हाजिर रहती है हमेशा आपके खिदमत में। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराती है आपको हमेशा। तो इसी मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Good evening, Itanagar.

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ कुछ अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ, जो हम सभी का जिन बातों का हम सभी का जानना जरूरी है। दोस्तों, बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें कहा जाता है और हम भी यही मानते आ रहे हैं कि बिजली जब कड़कती है तो हम मोबाइल दूर कर लेते हैं, अपने हाथों से या बच्चों से छीन कर दूर रख देते हैं। क्या ये सही है? इस बात पर चलिए बात करते हैं आज इस कार्यक्रम के दौरान। ये सही है या गलत है, इस बात पर निर्भर करता है कि फोन चार्जर से जुड़ा है या नहीं। अगर मोबाइल चार्जिंग पर लगा है तो ये खतरनाक और गलत साबित हो सकता है। अगर बाहर बिजली किसी तार या खंभे पर गिरती है तो हाई वोल्टेज करंट चार्जर के जरिए आपके फोन और हाथों तक पहुंच सकता है। इससे बड़ा झटका लग सकता है या तो फोन ब्लास्ट होने का खतरा भी रहता है। अगर फोन आपका फोन अगर चार्जिंग में है, ये तब की बात कर रही हूं, लेकिन अगर मोबाइल बिना चार्जिंग किए रखे हुए हैं और बिना चार्जिंग किए ही आप उसे अपने हाथों में पकड़ रहे हैं तो ये सुरक्षित है, सही है। अगर फोन चार्जर से नहीं जुड़ा है तो आप इसे हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली कड़कने के दौरान भी, ये तो ये बिल्कुल सही और सुरक्षित ही रहता है। दोस्तों, ये एक आम अफवाह है कि मोबाइल की रेडियो वेव्स बिजली को अपनी तरफ खींचती है। बिना तार वाले मोबाइल में इतना मेटल नहीं होता है कि बिजली को आकर्षित करें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिजली कड़कते समय मोबाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बस उसे चार्जिंग पर ना लगाए। इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोता, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे थे इस गीत का, ये प्रेम मोल्लिया फिल्म से श्रेया घोषाल, निहाल और हिमेश रेशमिया की आवाजों में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: श्रोता, हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। क्या अंडा रोज खाना सही है? कई बार देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग या हमारे एल्डर्स हमें रोकते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर आप अंडा खाते हैं तो ये हमारे शरीर की गर्मी और बढ़ाती है।

होता है। गर्मी में अंडा खाते समय ध्यान कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप सीमित मात्रा में अंडे खाएं। अगर आप ज्यादा अंडा एक से एक या दो अंडा खाते हैं या एक से ज्यादा अंडा खाते भी हैं, तो इसका जो एग योक होता है यानी कि पीले वाला भाग, आप इसे हटाकर एग व्हाइट यानी कि सफेद वाले हिस्से को आप खा सकते हैं। अगर आपको घबराहट है या फिर आप डरते हैं कि इससे गर्मी ज्यादा होगा तो, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में उबला हुआ अंडा यानी कि बॉयल्ड एग खाना सबसे अच्छा माना जाता है। ज्यादा तेल मसाले वाला या फिर ऑमलेट या फिर करी पचने में बहुत भारी होता है और पेट की समस्या बढ़ा सकती है। तो एज ए होल देखा जाए तो ये कहना गलत है कि गर्मी के मौसम में अंडे नहीं खाने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। और हाँ, बने रहे हमारे साथ इसी तरह अरुण FM 103.1 MHz पर।

सावर या फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बताना चाहूंगी आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नौकते डायलेक्ट न्यूज। और हम जुड़ेंगे आपके साथ

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा कहा, जो सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को जोड़ता है और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। ईटानगर स्थित दीरानाथन गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा कॉलेज के जुबली हॉल में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग ईस्ट सियांग द्वारा पासीघाट राष्ट्र पोषण माह 2026 के तहत आंगन का उत्सव में भव्य उद्घाटन का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई में आयोजित का एक कार्यक्रम में AICRP ऑन पोल्ट्री योजना के तहत कुल 1200 कलिंगा ब्राउन नस्ल के पोल्ट्री चूजों के साथ टार्टर फिट के 38 पैक 50 किसानों को वितरित किए गए। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसके शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडमरु मध्य को खोलने का प्रस्ताव दिया, अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी दो रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय के रूप में समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट।
0: विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए के सामने रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने जीरो में आयोजित जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा कहा, जो सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को जोड़ता है और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जैसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और अभिव्यक्ति को सामने रखने, आत्मविश्वास विकसित करने तथा उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए एक रचनात्मक मंच प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि यह महोत्सव आज भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र संगीत समारोहों में से एक बन चुका है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उदाहरण देते हुए कि किस तरह संस्कृत, रचनात्मकता और सामुदायिक भागीदारी एक साथ मिलकर युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। स्थानीय युवाओं और संगीतकारों के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल ने उन्हें समर्पण और अनुशासन के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईटानगर स्थित दीरानाथन गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा कॉलेज के जुबली हॉल में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तुम्बम रुबा चोमोलिली ने राष्ट्र की एकता में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी विभिन्न भाषाएं और संस्कृति पृष्ठभूमि वाले लोगों के आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों के संरक्षण में महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने सभी से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को सीखने, बोलने, सम्मान देने और संरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मातृभाषा और स्थानीय बोलियां व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने लोगों को हिंदी के साथ साथ अपनी भाषाई विरासत के प्रति भी सम्मान और गर्व के साथ भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ईस्ट सियांग द्वारा पासीघाट में राष्ट्र पोषण माह 2026 के तहत आंगन का उत्सव के भव्य उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत हितधारक समन्वय बैठक की आयोजित की गई है। कार्यक्रम में उपायुक्त सहित स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उपनिदेशक आईसीडीएस सह जिला बाल संरक्षण अधिकारी एमटी पादुंग ने आंगन का उत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिले में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमियों को दूर करने के महत्व पर भी आवश्यकता पर भी बल दिया है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर संरचना और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए समर्पित बहुविभागीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इस अवसर पर उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने सभी प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि विभागों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई जमीनी स्तर की चुनौतियों के समाधान और बच्चों के हित में प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान AICRP ऑन पोल्ट्री योजना के तहत कुल 1200 कलिंग ब्राउन नस्ल के पोल्ट्री चूजों के साथ स्टार्टर फीट के 38 पैक 50 किसानों को वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खेत पर सस्ते और उन्नत मुर्गी पालन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने और बेहतर पोल्ट्री उत्पादन के माध्यम से किसानों के आजीविका के अवसर को भी बढ़ाने का कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाएगा। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगने प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का सह तीसरा स्वर्ण पदक रहा है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बराबर रखने के लिए बधाई दी है। जापान में विश्व एसवाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार

0: नमस्कार दोस्तों, नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए इसी मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग, माफ कीजिएगा श्रोता, आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

दोस्तों, शाम के पल का एक अलग ही जादू होता है, और जब इस शाम के पलों में आपके अपने मनपसंद गीतों को सुनने मिल जाए तो ये एहसास कुछ और ही बन जाता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में, और बता दो आपको कि पहला गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को, दिल तो पागल है फिल्म से।

दोस्तों, शाम की खामोशी को जब गीतों का साथ मिल जाता है तो दिल की अनकही बातें भी सुर बनकर सामने आने लगती है। बताना चाहूंगी आपको कि इस गीत का आनंद आप ले रहे हैं हम है राही प्यार की फिल्म से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों, रामलखन फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन निराश बिल्कुल भी मत होइए दोस्तों, मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपके पसंद का ख्याल है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: श्रोता मोहित चौहान के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, मनोरंजन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
5: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों बता दूं आपको कि पहला गीत आपने सुना पति पत्नी और वो दो फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को मोनिका ओ माय डार्लिंग फिल्म से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: Next Gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

श्रोता, पुलिस गिरी फिल्म केसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: तो मेरे प्यारे दोस्तों, आदि दैलिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes.

करते हैं दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जूही चावला के बारे में। 13 नवंबर 1967 को जन्मी जूही चावला अंबाला, उनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ। जूही के पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर थे। जूही चावला की शुरुआती शिक्षा मुंबई के फ्रंट कॉन्वेंट स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के सिडनहम कॉलेज से की। जूही चावला एक अच्छी डांसर भी है। जूही चावला ने कुल 3 साल तक कथक सीखा और फिर उन्होंने छोड़ दिया, मगर उन्हें कथक छोड़ने का दुख अभी तक है। वे शास्त्रीय संगीत भी अच्छा गाती है, क्योंकि उन्होंने 6 साल तक शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली। इतना ही नहीं दोस्तों, जूही चावला 1984 में मिस इंडिया भी रह चुकी है। और जब हम उनके फिल्मी करियर के बारे में बात करते हैं तो जूही चावला ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 की फिल्म सल्तनत से की थी। फिल्म में उन्हें जरीना का किरदार निभाया था। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार काफी छोटी थी, लेकिन फिर भी बाद में दोस्तों कयामत से कयामत तक फिल्म में उन्होंने काम किया। और आप तो जानते ही हैं, 1988 में आई कयामत से कयामत तक जूही चावला की करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। उन्होंने फिल्म में रश्मि का किरदार निभाया और आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जूही की सादगी, मासूमियत, मुस्कान और सहज अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया। फिल्म की सफलता के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। 1988 के एक इंटरव्यू के अनुसार उन्हें प्रशंसकों की ओर से सैकड़ों पत्र और फोन आने लगे थे। फिल्म की लोकप्रियता इतनी थी कि कलाकार और टीम अलग अलग सिनेमा घरों में जाकर इंटरवल के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रिया देखते थे। तो दोस्तों, जूही को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार भी मिला। तो इसी बात पर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कयामत तक कयामत फिल्म के ही इस गीत का।

दोस्तों, जब हम जूही चावला के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आइए बात करते हैं फिल्म हम है राही प्यार के फिल्म के बारे में। 1993 में रिलीज हुई महेश भट्ट की हम है राही प्यार के फिल्म में जूही ने जयवैजयंती का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ आमिर खान मुख्य भूमिका में थे। कहानी में वैजयंती एक ऐसी युवती है जो अपनी शादी को लेकर परिवार के फैसले से सहमत नहीं होती है। जूही ने अपने किरदार में चुलबुलापन, हास्य, भावनात्मक संवेदनशीलता का सुंदर मेल दिखाया। उनके और आमिर खान के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म को दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया और आज भी इसे एक पारिवारिक, मनोरंजक और गर्मजोशी से भरी 90 के दशक की फिल्म के रूप में याद किया जाता है। जूही के अभिनय के कारण उन्हें इस फिल्म के लिए 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला और हम है राही प्यार के ने उसी समारोह में बेस्ट फिल्म पुरस्कार का भी अवार्ड जीता।

0: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: दोस्तों, जब हम जूही चावला के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनकी मूवी राजू बन गया जेंटलमैन भला कैसे पीछे रह जाए। जी हाँ, 1992 में रिलीज हुई अजीज मिर्जा की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में जूही चावला ने रेनू का किरदार निभाया। फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान, नाना पाटेकर और अमृता सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे। रेनू के किरदार में जूही चावला की सादगी और मुस्कान ने राजू बन गया जेंटलमैन की कहानी में एक खूबसूरत रंग भर दिया। शाहरुख खान के साथ उनकी सहज केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान भी खींचा और यह जोड़ी आगे चलकर हिंदी सिनेमा की यादगार जोड़ियों में से एक साबित हुई।

राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दो आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: ስ አካዝማኔ ኢታኖ ፖኩመ ሽት ፖርገ አሎቸም ይጎላ ሎክ ናንፏ ኦሩም ገከነባጀ ረመ ታርመልም አለመለስሩንገ ኒሲ አውም አረም ሞለንጂ ግሬመ ታርገ ደታቸው በስሩንገን ሽፖየም ታፓቸው ረጀብጀንሺ ነርመ አኮም ርፑ ባብላ ኢታናግ ደርናቶን ጎሜን ኮሌጅ ሂንዲ ዲፓርትመንት ሞርገ ኛ አልሆ ኮሌጅ ጁብሊ ሆል ሎ ሂንዲ ፓትዋራ ገ ሬጅብሪጋብ አሎኸም ሪግ ፑኩንመኸም ሜምፓቶ ኦቀሲግነ አሎሎ ቱኩምነ ኒግድ ነ ሂንዲ ዲፓርትመንት ገ ሄድ ዶክተር ቱምቦም ርባ ጃሙሊሊ የ አጎማ ጃብከነ ሬድ ኩላሶ ሂንዲ አጎም ገ አልዮቾኩ ኩናም ገላ ሞክኸም አኬን ጎበ ጃብግበግ ሞዱኩበ ርናም ልክ ሎከ አጎም አምልኸም ጃብቶም ፑኩንመኸም ሜምፓቶ ኦከ አጎም አኸም ኦስ አፓ ጎበ ጃሚ ሲንኸም ጎምፓ ፓኬን ሎ ጃብግብግ ሞነ ናበ ሂንዲ አጎም ሲ እዊ ዩቹኩ ቱክነ ኸም ለብ ጃብታገ ግሪክላ ሶከ ሂንዲ አጎም ኸም ጃብግ ላ ሬክታናም ገ አጎ ሎ አት አትገ አን አብገ አጎም አ ጃብግ ኩናም ኸም አልበ ጃብግብግ ላ ሪግታት ኩካ ኸም ለብ ጃብታ ፑክነ በኸም ቶ ኦከ ata atiga ana abga agom kham la local agom kham arba jabga bugu la sicha ga cha gat ku ka kham la bu japta ga kri klaso ni chen ni tim de ne atiga agom kham chen de bala jabga bugu mod ku ba ok kurum ab apa gud ga setam gu tam kuna gu de ne alba chatur men tor la se ga da ga mo ba du ku ba tum sir ka no nyat ku ka kham la bu japta pu ku na ba kham to ओके हिंदी ला आतेगा आगम सिम गृषि च ब से ग ग तु का हम ला शोक दु कुम लो दो पा दा पा ने नि ग द ने ब तुम से आगम हम जब ता पु कुन म हम ने पा ता तो हिमालय ग दा लो शिबि इस ग मे गो मोजे रि जे जिनम ले ग ब नेपाल ला भारत ओक चाइना मो क बुलु लेकिन गो ब हिमालयन क्लाइमेट रेसिलियंस मेकानिज्म सिम मोबामला मोन दब रित कुन हमला नेपाल मो ग प्रोमिस्तान दरम बेलेंद्रा शा या जाप कुम हम मेम पा तो ओक मोर ग न्या आल हो नेपाल मो ग प्रोमिस्तान दम सा या अचाम पीर गोला लेकिन ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन क बालो अवमा जाप के न रेड कुला सो मुइद मो ग ओग से हिमालय ग दा लो सिगो ग गो हम आलव सिकन ग केन गमा दुकु उब मुजि ताक दुकु न ब हम ला जापा पुकु न ब हम तो ओक अतालो योगो गो रिदा बोलो सोक मुक ओमलो क नि ग ते ने जापा ब पा चोम दुकु उब सेतलाई दाता सिमला टेक्निकल एक्सपर्टाइज मोनरलेन ग द ब रिद कु न हम ला ब प्रपोज म ता पुकु न ब हम तो नोशिनिशि पुइशि मा खासबानी तानो पुकुम लोक थाल दोन्या तो सो खसीत पोल ग अलो छेम नि गोला लोकेन नन लोक लाला हेक ला अलो छेम नि गोला लुइप नन लो गोब मिजोरम ग आइजोल लो नॉर्थ ईस्ट रीजनल मोटाई चैंपियनशिप 2026 छ हम रे को को अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह गोल्ड मेडल एनी गोला सिल्वर मेडल ओक ब्रोंज मेडल आशा तरे गो पाप कु मखम मेम पातो ओक अचम कोना गोला आकिन केजी लो गोजुमरीराम ये गोल्ड मेडल हम पागरिक ला अचम पीन गोला आक केजे आरा लो जुमराक लकार ये गोल्ड मेडल आमेन हम पाता ग ग्रेकला चा को गोला कन केजे आरा लो क सिल्वर मेडल आमेन हम कुगो योका पागरिक ला चा को गोला आकिन केजे आरा लो क ब्रोंज मेडल आमेन हम मार्जुम रिराम पाप कुम हम मेम पातो भारत लो क मैराथन लो जुगला युचम खुने साबन बरवाल ये बेयारा के बपा मोबे दुकु व एशियन गेम्स 2026 लो सिल्वर मेडल आमिन हम पाप कुमा ऑक्सोक तायो लो इंडियन वुमेन कबड्डी टीम के ख ईरान ने कीपा याला 2026 एशियन गेम्स लो गोल्ड मेडल आमिन हम पाता पुकने में हमला नेम पातो मोरगन्या अलहो फासिगाते लो मिशन बत्सालिया ओक मिशन शक्ति आरा लोक सो स्टेक होल्डर गद ग आजन ब कबा हम राष्ट्रीय पोषण मा 2026 हम तो कुनाम ब इस यंग डिस्ट्रिक्ट ग डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन ओक चाइल्ड डेवलपमेंट ह कई कुन सेशन कबा अनगन का उत्सव हम मुको जिग्न म खवले मे पा दो Oksoka kabatu kumlo DC shonali la osos local administration good la kim kai kai kuna ni gud kha dopa da kwa nyap kuma oka home a gud ne alba donam tinam ham dom tim ga gri kla sikan ge kan alba silen gelen mose luku loka agom a mulu ham deputy director ICDS kam district child protection officer MT Fadung ye japa jikna ba kham mem pa ta to ka surungan shipu ye hebo So kuku betangge de tagap sa agom gotra to pol piken ham chimri om unit ko electric om ham anye ba pala mod ku ba so nama nama lo rup top solar system sim mutu la mulig mod ku ba bharo sarkar kha pm surya ghar mukt bijli yojana ham lanchi molen jip ku ma ok sheva sanklap abhiyan ara lok arunachal pradesh sarkar ga department of power ha state lok scheme ham modrumo pa jila red kula sok scheme lok puspa se ham pumpa ma du ku ba shokshi polga aloluri gula lok nan lok la la hik la pura polga aloluri gula lok nan tor go ba state ga kusu kora gda me lo seva situ camp ham rig tak dukuna ma Oksoka camp tilo so register shan mok ham la iskim ham kadar tapa jik korpa ma anye ache ba rin gud ga lega ba desk me nam ok bank desk gud ha mutu jila ap jir kuna oksok lega ba ni la de ba de na gud ha sok spot lo register mok la ate ha milum sapa ma nam ko do bolo alba jabdar japa me se ko gik la korpa ma anye ache nam rika do ko ba register monam ka quotation ham la la hi kala bank lo ka murli mur ko ham chechon archo do ko ba apply nyat ko ka ok seva setu camp ham arne dun alatolo siang district voling lo rig gik la sok sing por ga alo chemni gola lok kona nana por alatolo state ga district headquarter mel lo rig gik la pura por ga alo loken nan hai alatolo la alo long nan si alatolo alo loken nan uji alatolo ok alo luri gola loken nan si alatolo state ga electrical division mel lo rig gik na hamla japata dukuna ma ok electric bill ham ani yad kuba sok rooftop solar system ham pol piken ga electric ham ani yad ba chimru om unit go jijri kna ok electric ga lega ba so namte ba ni bu pu ha nete metar lo leken go ba ali rikne so bill lo alu modar mo pa jir kuna ok ryu arunachal pradesh special category state lo dor da ba ham aken kilowatt lo
1: chi ta gap se agam go mulle akashpani itanagar irkum loke so puisa malinjiden mulu ni mulu tulu ga bhavne nyem nyega ko anyom akshir ga ba HIV la AIDS ke pago samni ne chendo HIV AIDS alman bo chehel ab sutul so chin bo sam chinam samnule bos lo brima pan me so HCM yo kam chida pa hel so ning ni vyap sitan hel do madne nule sam al jab chen do du bripa sam chen do du brinam se yo kam nule chen do bolo so h pago samnule ayab kal chen bal do bolo kam nun so h bo ning do ja kam so h chen nul anyab su du gitai na si koi go su du gitan og HIV la AIDS og ka jidun ha blo kam si nyem nye ga dobam kolo og so ui na ko sul do kam og so so BGP na nam pi ko sul ni HIV og pi kam ho so HIV do den og so HIV nul HIV usi madan nuluk ala chiri kolo chetin mi sul do kolo lekin go dawan dawan la do kam nul si HIV umadan ओ गब नुले एचसी दोने दोमा देने हम मोद मोदम का द नुल मेडिकल हाला नुल एंगम का काकम दो लिपाने ओ पिंग तोलो मुलु निंग एचआईवी ला एस व गुतु गुरालो निन दोद लो कम हो नि तुलो हम कम नुल अन्या बि दो दो लि दिन साम नुल तिम पा दो लि मा देने साम या नुल से का दो लिपने ए मार्दी सि से का मा ब अन्या मा तिम पा बन्यो कम सो नि सि एचपी या दो ता देने ओ गे साम नुल चेन दो तकल बाहरा नुल चिन दो लो कम नुल 1097 host number so call mug do sam anya ba taka taka oga sam chem do sam ayab jig mug do sam nulam achap ma do wel kal do bung hai Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS Naharlagun loga jilin panan ke se takap sa puya hat ko paya lin cho
2: श्रोता बता दें कि अभी आप सुनेंगे एक विशेष श्रृंखला जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा पर।

0: और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई और यही नहीं रुकी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता बल्कि एक परिवार एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: धन्यवाद
0: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थीं स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के आईएएस अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गाँव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए और स्कूल में उनका स्वागत किया गया उनको उपहार दिए गए उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉप आउट रेट कम हुए गुजरात में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव क्या थी योजना किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में
2: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी इसके तहत राज्य के मंत्री अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच बुनियादी ढांचे मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है
0: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया सुशीला जी आपके साथ शुरुआत करते हैं कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को
1: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है इंडियन रेनेसां उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते फिर उनके बाद जो राणा डे फिर विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ कि अगर हमारी बेटियां हमारी जो माएं हैं अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे गांधी जी हैं सुरक्षित हैं और महिलाओं का बहुत योगदान था और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका की जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है तो ये सारे उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया जब संविधान बनी भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए सबको समान रूप से मिला और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष के जो पे स्केल और एक औरत ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है फिर मैं ये कहना चाहूंगी 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं जैसे आपने बताया नारी के लिए शिक्षा नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रख के डिसाइड कर सकती है तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आजादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा नारी की स्थिति में कैसे फर्क लाए ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं है उनकी जो सोच है उनकी जो परवरिश है उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है माँ है बाद में बीबी आएगी उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक उनकी डिग्निटी उनकी रिस्पेक्ट ये जो सोच था ना ये की थी क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जो ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम है और जितनी भी योजना है ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते ना कि ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में
0: थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं अजय जी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी वहां बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं
3: देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है न सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीजन के तौर पर वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए. सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है. इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव. जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है. आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं महिलाओं के प्रति, आप क्या सोच रख रहे हैं. गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदलकर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूम है. वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं. आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है. जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गई. तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं है, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं. उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने एक पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है. वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें. प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है. जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है. इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है. ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में, और वो अब बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है. जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है. ये बदलाव है.
4: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं. आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट.
2: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं. बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं. इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई. इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना. समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना. इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया. अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है. अब बात गुजरात की. गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं. सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है. जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे. इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी. उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया. 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया. इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया. लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है. उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसके शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
0: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़े तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
1: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माओं को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
0: जी।
1: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा
0: जी।
1: पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी। 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कॉलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से। तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं, और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने। हाँ, टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने जैसे आप कह रहे हो चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, पर रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधा है, और देखिए घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन। सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ये सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है और उस टाइम के जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत थी, ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ। बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का कि इतने सारे लोगों को जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट्स। तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
0: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अदिति जी। एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है। लखपति दीदी को कैसे देखती हैं?
3: देखिए, लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखेंगे जो जनधन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जनधन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस। ये तीन चीजें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं। आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की। मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाएं अपनी अपनी जगह, कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा। सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गई, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से एसएचजीज के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन एसएचजीज को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए। वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की ये स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी। आई एम श्योर 1200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 एसएचजीज को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किसलिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे एसएचजीज की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में एड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया। बहुत एम्बिशियस टारगेट है, पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है।
0: जी हाँ, अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ, उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
3: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज्यादा, अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य है, और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये तीन तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक अलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि तीन तलाक के कानून से करेक्ट किया गया, क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हमारे देश में चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो, वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इंपेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
0: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की चार दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
1: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुरनल मुरल की एक किताब आई थी एशियन ड्रामा, उसमें मुरल साहब लिखते हैं, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था हिंदुस्तान के बारे में, कहते हैं कि इट इज अ कंट्री वेयर इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मिड 60s, बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वुमेन शुड बी फाउंड इन इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं, हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोवर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग की जो वुमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि विमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं। उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित, हाईली वेल प्लेस्ड वुमेन अपील करती है, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वुमेन को भी, जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वुमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वुमेन के जो कंसर्न, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है, वो बहुत हटके होते हैं। कहने को दोनों महिला है, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें। अगेन ये जो एम्फेसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं, उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं, ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, राइट? आई मीन दे हैव कम अप फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स बट मेड इट टू द टॉप बिकॉज दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज। दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी, अ इक्वल सोसाइटी।
4: अदिति जी, तो महिला नेतृत्व की जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को अब नेतृत्व क्षमता में आगे आना चाहिए, बतौर पत्रकार आप किस तरीके से बदलाव महसूस करती हैं?
3: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव

0: ऑप्शंस में जब पहली बार आरक्षण आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था, और आज की डेट में आप देखिए कितनी सारी महिला नेतृत्व नेत्रियां हमारी लोकल बॉडीज में हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में हैं, पंचायत्स में हैं। तो लीडरशिप डेवलप होने में भी वक्त लगता है। आप आज लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे तो कल वो उभर के आएंगी, ये लॉजिक देना कि महिलाएं कहां से मिलेंगी, उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज कहां से ढूंढेंगी, ये बहुत लेम लॉजिक है। और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलेंगी जब ये लॉ पास होगा, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में महिलाओं की सशक्तिकरण का एक सिग्नल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के पतियों को वहां मारा गया था पहलगाम में। दूसरी बात, बहुत देर तक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देश के बिहाफ पे ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट्स देने के लिए जो बुलाया गया, जो स्टेज दिया गया, वो महिलाओं के प्रति एक विश्वास का सिग्नल था, एक बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड गवर्नमेंट का सिग्नल था कि हम तैयार हैं महिलाओं की नेतृत्व को एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए।
1: जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर कहें तो महिलाओं को जो उन्होंने एक बदलाव दिया वो था उनके अंदर का आत्मविश्वास कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, और देश में उसके लिए माहौल है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अगर आप खेल के मैदान में भारत का तिरंगा लहराना चाहती हैं, फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं, या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं, तो आपके लिए आपकी जो सीमा है वो आकाश ही है। और इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे, और वो बदलाव भारत को एक नया भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। प्रोफेसर सुशीला जी और अदिति जी, दोनों कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रही थी शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

श्रोता, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष संस्करण। आइए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आज

0: मन की बात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दो आपको कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। और ये भी बता दो आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में यानी कि ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे अरुणाचल, माफ कीजिएगा, वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे अरुणाचल न्यूज रील।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप, और जिसके तुरंत बाद आपने सुना अरुणाचल न्यूज रील। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोता, अब समय हो गया है कुछ पाश्चात्य संगीतों का, तो चलिए आनंद लेते हैं वेस्टर्न मेलोडीज का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।

एक बार फिर से बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। और इस सफर में इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को कोहरा फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट

श्रोता, इजाजत फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचानंद दोले तथा तकनीकी अभियंता HR ब्रह्मा के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी RJ मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के FM।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गंगाए डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है।

0: स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहा है।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन by our colleagues, but actual manufacturing capability has been developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ पोस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड।

0: जिसमें 1 लाख करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 इयर्स एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी. डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं. टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए. लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है और ये 50% ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी. और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमोसफियर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो. मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स. So it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी इफ यू लुक एट इट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स. दूसरी चीज है कि हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली और दूसरा है हार्डवर्क करना चाहिए.
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत. भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है. तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं. तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है. ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं. अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है उसको नैनो सेकंड से चाहिए तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं. अब ये जो अधिसूचना है इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है इसका एक रेफरेंस सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था. कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है. तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है. इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा. उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं. तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों. अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे. अगर ये अधिसूचना को फॉलो करें

0: इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
1: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
3: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
2: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
3: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और इन्वायरमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट

0: हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट इन्वायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
1: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
2: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
2: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंगेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
3: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है जिसमें इंडिया नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो

0: भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
1: जी,
0: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सू की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगे और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक ना ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी। क्योंकि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
2: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
3: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
2: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों के सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
3: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसे की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said a meeting of the Commission was held today, where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. A committee headed by the Senior Deputy Election Commissioner and comprising an independent expert from IIT and IIIT will review ECI Net to double-check that it complies with the provisions of the Acts and Rules. The BJP has condemned the allegations levelled by opposition parties, particularly the Congress, against the Election Commission on SIR as extremely unfortunate. Addressing a press conference in New Delhi today, senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said the Election Commission has issued a press note stating that all decisions related to the special intensive revision were taken with the consent of the Chief Election Commissioner and both Election Commissioners. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several developmental initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara near Kollam in Kerala today. These initiatives aim to ensure women's participation in the cooperative sector and strengthen women's empowerment. Chief Justice of India Surya Kant has said drug abuse among children should be viewed not only as a public health issue, but also as a matter of child protection. He was speaking at a seminar on restoring childhood, preventing drug abuse and reintegration of children in need of care and protection in Patna today. The Chief Justice stressed the need to ensure that children affected by substance use are provided safety, treatment, counseling, rehabilitation and opportunities to resume education and family life. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program.

0: Kibat on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for greater adoption of technology and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York tonight. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the IEG Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा मुख्य समाचार विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण तजिंद्र पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता भारत के 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक और अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे सत्र का विषय है विश्वास बहाली परिवर्तन का प्रबंधन एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस्टिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे एक रिपोर्ट
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी खोज और बचाव आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है एआई का उपयोग जहाजों संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम गेब्रियस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पतन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
3: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की जेएनपीए और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
1: बांग्लादेश ने एक विशेष राष्ट्रव्यापी खसरा रूबेला एमआर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 34 लाख ऐसे बच्चों को लक्षित किया गया है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या छूट गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंटेंसिफाइड एमआर कैचअप वैक्सीनेशन शीर्षक से ये अभियान आज ढाका के विभिन्न क्षेत्रों में टीएनडी खेल के मैदानों में चलाया जा रहा है। पुर्तगाल और मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का फिर समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 81वीं महासभा की चर्चा के दौरान दोनों देशों ने समर्थन किया। ये समर्थन वर्तमान क्षेत्रीय और राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की व्यापक मांगों के बीच मिला है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मानचित्र जारी किया है जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ट्रंप जल डमरू मध्य के तौर पर दिखाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने के लिए ईरान के 7 दिन के प्रस्ताव को ठुकराने वाली श्री ट्रंप की घोषणा के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की मांगों को मानने की ईरान की इच्छा पर भी संदेह जताया है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान पर फिर से अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बनी हुई है। ईरान ने 7 दिन की शांति प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था जिसके अंतर्गत सभी 5 मोर्चों पर लड़ाई रुक जाती। इसके बदले अमेरिका से ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने, ईरान की रोके गए फंड जारी करने और तेल से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की बात भी कही गई थी। यह कदम इराकी हवाई अड्डों पर ईरानी उड़ानों के निलंबन के बाद उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
1: रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज होने के साथ यूक्रेन में 4 लोग मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, ग्लाइड बमों और जेट चालित ड्रोनों से हमला किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले से एक डेटा सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और स्टारलिंक उपग्रह संचार प्रणालियों को सहायता प्रदान करता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस हर दिन युद्ध को और बढ़ा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक सुविधाओं पर ड्रोन हमले जारी रखे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले उसके कार्यकर्ताओं और सांसदों और नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि महिलाओं से सहित पीटीआई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ परिवारों ने कहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों तथा आवाजाही की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति व्यक्त की। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों के आज

0: वे दिन भारत ने 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलवन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज। हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण। तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. U.S. President Donald Trump rejects Iran's 7-day framework for reopening Strait of Hormuz. 4 killed in Ukraine as Russian and Ukrainian air attacks intensify. And in Asian Games, Indian men's and women's Kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tejinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. External Affairs Minister S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly UNGA in New York tonight. A report.
3: The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Earlier, Dr. Jaishankar raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying such incidents were no longer isolated occurrences. He was speaking at the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers held on the sidelines of the UNGA session in New York.
4: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea, and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
3: Dr. Jaishankar also held meetings with his counterparts from Iran and Russia, during which they discussed bilateral issues, cooperation within the BRICS grouping, and the ongoing conflict in the Gulf region. Suparna Saikia for World News.
2: The General Assembly brings together presidents, prime ministers, and senior representatives from all 193 UN member states to outline their priorities and positions on major international issues. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. India's campaign for a permanent seat in the United Nations Security Council has received fresh support at the UN General Assembly, with Portugal and Mauritius explicitly backing New Delhi's bid. The endorsements came during the 81st General Assembly debate at the UN headquarters in New York, amid broader calls for reforming the Security Council to better reflect current regional and political realities.